दर्द दिल हो, दर्द दिल हो, दर्द दिल, दर्द दिल मीन्स लव ऑफ अल्लाह ताला. बिकॉज सम पीपल थिंक दर्द दिल मीन्स समझ गेट अ हार्ट अटैक. डजंट मीन हार्ट अटैक, मीन मोहब्बत ऑफ अल्लाह ताला.

ही छोड़ दे, असली हिजरत नहीं सिर्फ तरके वतन। हे जरूरी गुनाहों को भी छोड़ दे, असली हिजरत नहीं सिर्फ तरके वतन। लज्जते जिक्र नामे खुदा है चमन, और गफलत की दुनिया है दशत ओ दमन। ये है फैजाने आहो फुगा देख लो, ये

अब उम्मीद करमाया गरचे पुरखता है पर कहा जाए तेरा बंदा, तेरे दर पर तेरा बंदा अब उम्मीद कर।

मुझसा कोई बदकार न होगा, कौन सी मैंने की न बुराई। मुझसा कोई बदकार न होगा, कौन सी मैंने की न बुराई।

कहीं मैं देखूं जिधर मैं तेरा ही जलवा पेश नजर हो, जाऊं कहीं मैं दे।